0: बारी बारी।
1: जे सोवारी मैं भूल जावा ओ दर फिर भी खुला है। जे मैं एक कदम पीछे मुड़ियावा यार उठे ही खड़ा
0: बारी
1: दिसदा
0: बारी।
1: है। ना मैं तख्त मंगा

0: उम्र पर महका जांदे नी।
1: बहुत
0: लो जी, ये
1: बढ़िया,
0: सी सूफी कलाम ते
1: थैंक यू जी,
0: एक
1: थैंक यू।
0: सॉन्ग जड़ा जल्दी जल्दी गुनगुनाना ना, जे तरी जा दे तो
1: जरूर
0: भी
1: जरूर,
0: सही।
1: आउण
0: हाँ
1: दियो,
0: जी
1: आउण
0: जी
1: दियो
0: जी जी

जी दोस्तो, सारे दोस्तों का दुआबा रेडियो के मंच उत्ते निका स्वागत है। माफी चाहते अज दोस्तो काफी मुशक्कत घोल के काम कर करके टैक्निकल इशू दे नाल तुहाडे रूबरू होए आ, माफी चाहते हैं। तकरीबन 40 मिनट आपां लेट है, पर जिन्ना कुछ भी कर सकांगे जरूर तुहाडे रूबरू होवांगे। अज सब तो पहला समा स्थिति तुहानू पता ही है जी, पर समय वल नू नहीं जावांगे ते समा खराब नहीं होर करांगे। ते सारे दोस्तों का दिलों धन्नवाद, तुसी इंतजार करदे हो, चाहे पोस्ट पा भी दित्ती सी कि अज प्रोग्राम नहीं हो पावेगा, पर तुहाडी उडीक तुहाडा प्यार मुहब्बत सब दोस्तों का खिच लिया है। ते दोस्तों अज दीआं खबरां दे वल नू ही चलदे आ सीधा, जो अज दे मुद्दे ने। ते समा जिवें इजाजत देवेगा, जिवें सबब बनेगा, अगे गल्लां बातां करदे जावांगे। ते लाइना तुहाडे लई खुल्लियां रहणगियां, +352 44 976 1969 स्टूडियो दा नंबर है। अजे वी कुछ कमी परेशानी लगदी है, पर आपां नाल नाल सूत कर लैणियां। थोड़ी जिहियां आवाजां जिहड़ियां ने अलग ढंग दे नाल निकलदियां दिखदियां ने। ते अज दोस्तो माफी चाहांगा, ते अज नाल दी नाल आपां पोस्टर दे नाल ही सारांगे, ते लाइव जिहड़ा वीडियो नहीं चल पावेगी उहदे लई वी गुस्ताखी माफ। ते अज समां ते स्थिति दी गल करिए, ते 7 सितंबर 2026 दा दिहाड़ा है, ते जिहदे विच अज दे विचार दे नाल शुरुआत कर लैंदे आ। थोड़ी जी दो क सत्रां ही सांझियां करांगे। कहिंदे हौसले बुलंद होणे चाहीदे आ, ते हौसले बुलंद होण तां सारा कुछ संभव हो सकदा है। ते दोस्तां मित्रां दा, सैणी साहब दा नाल, ओजला साहब, सारे जिन्ने भी तुसी दोस्त जुड़े हुए हो, जीरा साहब, सब दोस्तां दी उड़ीक दे विच हाजर आ। कहिंदे ने कि जेकर हौसला चलिया गया तां मनुख दी अद्धी समझदारी उसदे नाल ही चले जांदी है, क्योंकि बंदा 1.5 घंटा हो गया कमला होया पिया सी, ते पता नहीं लगदा सी करिए तां की करिए, पर सारा कुछ दुरुस्त कर रहा। जिन्हां ने कीता उन्हां दा भी बहुत बहुत धन्नवाद है जी। ते प्रोफेशनल लोग फिर प्रोफेशनल ही हुंदे आ। ते गल करदे आ दोस्तो अज दे दिहाड़े दे उत्ते, ते अगलियां गल्लां बातां दे वल चलदे आ। देश दे दीआं खबरां जो कहिंदियां ने उन्हां दी जिहड़ी है आपां गल्लबात करदे आ। जो दुनिया दे उत्ते हालात ने पै गया है कलेश, वैसे साडे ही पै चलिया सी इत्थे, मतलब कि नैट दे नाल, ते बदल लिया है भेस, किन्हां ने बदलिया उहदे खुलासे करांगे। किसानां दा केस जिहड़ा है ते CGI बराजे ने नवें, ते भरणगे खमियाजे, हुण देखदे आ कौन कौन खमियाजा भरदा है। ते चंद दे उत्ते जिहड़ा ट्रंप दा कब्जा, उह दावा कर रिहा कि भाई चंद दे उत्ते कब्जा असीं कर लिया, होर मज़ की शै है। ते इसे तरह हुण तों लै के जिन्ना भी समां सबब बणेगा बणाउंदे आ। ते सब तो पहला तुहानू कुछ जड़ियां ने देश दे दियां खबरां सुनाउंदे आ। ते उम्मीद करदे आ आवाज़ ते अंदाज़ वधिया तरीके दे नाल पहुंच रहा होवेगा। तुसी थले जरूर लिख देना, ते सारे दोस्तां दे मित्रां दे सज्जणां दे जिहड़े ने सुनेहे आ रहे ने। ते लो फिर पंजाब दे नाल ही शुरुआत करदे आ। पंजाब दे विच रांझसी जमीन तलाश कर रहे गैंगस्टर डिंपी जिहड़े ने चंदपान

0: हाँ बिल्कुल
1: गैंगस्टर
0: हाँ
1: नालों।
0: जी
1: गलत है
0: जी
1: जो कुछ पहलिया सरकारां नहीं आईयां
0: जी
1: उन्होंने किया, पंजाब लुटिया, जायदादा बनाईया,
0: जी
1: अज तक किसी ने की उन्हों का कर लिया जी।
0: बिल्कुल है जी
1: साडा पंजाब इसे लीह ही तुरिया होया वा,
0: बिल्कुल है जी
1: जेड़ा भी आंदा वा अगला आदा आवे आ वक्त की नकदी जो हाथ धो के चलता मनता।
0: जी बिल्कुल है जी
1: ते बाकी सेखों साहब साडे इलाके दे नहीं हैगे,
0: हाँ
1: पर
0: जी
1: इन्हां दा विधान सभा जेड़ा हल्का पैंदा उह पैंदा फिरोजपुर दे विच
0: ठीक है
1: मुदकी
0: जी
1: मुदकी पैंदा वा। ते ऐतकी जिला परिषद दीआं चोणां दे विच ते जदों इन्हां ने अपनी सोच बदली आ
0: जी
1: ते इन्हां नूं लोकां दा चंगा हुंगारा मिलिया जी। सही मायने दे विच दसां जी मैं,
0: जी जी जी
1: ते जदों इक वारी बंदा शुरुआत करदा वा ते लोक भी फिर कई बारी नवे चेहरे नूं तरजीह दिंदे आ।
0: जी बिल्कुल है जी
1: एक वैसे भी चलो उन्हां दा जिवें आपां कह लईए लोकां दे विच क्रेज ज्यादा हो गया जी, इस करके भी
0: जी
1: ते साडे फिरोजपुर जिले दी सीटां भी घट-घट दो तिन,
0: जी
1: जिथों की ओ ज्यादा एक फिरोजपुर शहर, फिरोजपुर
0: जी
1: देहाती ते जीरा,
0: जी
1: ओ तिन्ना इफेक्ट कर दिया जी भाजी
0: अच्छा
1: गल
0: जी
1: ये। हाँ
0: जी जी जी
1: जी हाँ जी। ते जे रही गल जेडी आपां कहने आ भई उन्होंने जिवें सैनी साहब अपने कह के गए ने भई
0: जी
1: जीरा ही क्यों चुनिया, भई
0: जी
1: पार्टी झाड़ू वाली क्यों चुनी,
0: जी
1: हो सकदा वो आजाद खड़दे वो भी जित
0: जी
1: जांदे, पर भाजी बंदा फिर जदों एंट्री करदा ना इस चीज दे विच वो
0: जी
1: कई तरह दा आपदा हर बंदे अलग अलग तरह की सोच रखदा जी।
0: जी
1: हुण मान लो तुसी अजकल साडे जीरे दे विच जिस तरह सारा कुछ इन्हां दे अंडर आ गया,
0: जी
1: पुलिस महकमा इन्हां दी चलदी बहुत आ, हुण
0: जी
1: जिहड़े 2-4 महीने भी हैगे आ भी 2-4 महीने भी हैगे लोकां दे काम कराउणगे आपे लोकी इन्हां नूं फिर चंगा समझणगे,
0: बिल्कुल है जी
1: चक्कर ते है ना।
0: पैड बना
1: फिर
0: लेंगे
1: टाइम
0: अपने
1: तक इन्हां नूं
0: बिल्कुल
1: मिल
0: है जी
1: गया ना, टाइम तक मिल गया ना इन्हां नूं कई लोकां दे विच आपदी पैठ बनाउण दा।
0: बिल्कुल है जी
1: ते इस करके कोई जरूरी नहीं हैगा। ते बाकी साडे कटारिया साहब दा जेड़े ऐतकी चंद चढ़ाए उन्होंने सानू पता ही है जी।
0: अच्छा जी उन्हां दे भी
1: हाँ
0: दस दियो
1: जी,
0: माड़े जी बिल्कुल है जी
1: उन्हां दी एक बहुत ही वधिया इमेज बनी हुई सी जी,
0: जी
1: ईमानदारी वाली जी,
0: जी
1: ऐतकी तां उन्होंने जिवें कहिंदे वी आहूला ते आ
0: जी
1: ओ जिन्ने सलां ते कहिंदे ने वी सब कुछ विकिया होया सी उन्हां दा,
0: जी
1: ते हुण मेला दा सब कुछ उन्हां दे घट पूरे हो गया जी।
0: क्या बात है जी घाटे बाते
1: हजे
0: पूरे कर
1: की
0: दिए
1: हां जी हजे हजे की पोस्ट भी उन्होंने पाई है कल भाई,
0: अच्छा जी
1: मैं ते मेरा बेटा अज भी महाराज दे अगे जाके सहुं चुक्कण नूं तैयार हां भी असीं जे कोई भी पैसा
0: जी
1: वे तो बनाया होवे तां।
0: क्या बात है जी जी
1: हां जी कल पोस्ट आई थी उन्होंने जी।
0: दलेर ने पूरे
1: हाँ
0: जी
1: जी मैं कहना पाजी झूठ चलता ही बहुत राजनीति जी।
0: अपने जीरा साहब रब जा हो जी चीजा शहां इन्हां दे लई लोकां लई थोड़ी है अपने लई है जी आम लोकां लई ए की मनदे आ रब नूं जी इन्हां नूं रब रहिंदा चेते जे रब चेता हुंदा तां इन्ना
1: पाजी
0: कुछ कर सकदे आ जे रब चेते
1: मंदन
0: होवे तां इन्हां नूं
1: वो तो गल फिर टवाणा साहब वाली गल आ गई ना, वो कहते
0: जी
1: भाजी अपने सज्जन एक जुड़े होंगे अपने नाल, वो कभी हम जुड़े नहीं, अज फिर एक किसने कॉल की
0: जी
1: टवाणा साहब कहता लास्ट वाली जो मिले सी ना भी उदो मेरी उन्होंने गल हुई सी ते वो कहते भी रब हैगा ते मैं क्या रब नहीं हैगा,
0: जी
1: वो कहता उदू बाद जुड़े नहीं, शायद हो सकता भी कहते यही ना उन्होंने गुस्सा
0: जी
1: लगा
0: नहीं उस अपने
1: हो।
0: जीरा साहब देखो कई बार आपां गल कीती है चलो सत्कार हर धर्म दा करदे आ पर इन्हां लोकां दी जदों मानसिकता देखदे आ ना जो ये सारा कुछ करदे आ इन्हां नूं कित्थे आ रब रूप याद जी उन चीजां उह तां देखो हुण हर कोई ये नहीं कहिंदे कि इत्थे कोई भी नास्तिक नहीं है मैं पर बेटे ना ना वह चलो साइकोलॉजी तां करदा पिया आ उन्हां गल्लां बातां चल पईआं जी इदां ही ना तां उह कहिंदा कोई भी इस धरती दे उत्ते मनुख जिहड़ा उह मतलब कि जिन्ना मर्जी अपने आप नूं कही जावे कि मैं हां मतलब कि कम्यूनिस्ट हां जां मैं किसे भी रब नूं जां किसे चीज़ नूं

जेड़ा कपड़े करे करोड़ा बिच बसे ओनू लीडर मन देने। पेन बैंक च दो रुपया दा जेनू तागे दे नल बन देने। जिथे रब कर संगता जुतियां नू, जिथे रब कर संगता जुतियां।

पै गईयां ने मेरे पल्ले सजना दर्द जुदाइयां सबे इक पासे मेरे ऐब खलोते दूजे पासे खुदाइयां सबे।

0: दिन रात मेहनता कर दे हां, मजदूर पक्की सरकारा होन जे फिर खुदकुशियां क्यों कर दे हां। कुलवंत हक्कां नूं समझे ना कोई, कुलवंत हक्कां नूं समझे ना कोई, ताइयों हक्कां दे लई लड़दे हां। ऐ जिंदगी असी मजदूर तेरे, जिउण लई मेहनत करदे हां, जिउण लई मेहनत करदे हां।
1: प्यारे श्रोतेओ, तुसीं हुणे ही कुलवंत सिंह सैदोक जी दी कविता जिंदगी असी मजदूर तेरे सुन के हटे हो। ते हुण मैं तुहाडे सन्मुख पेश करन दी खुशी ले रहा दिलशाद अली जी नूं। दिलशाद अली जी जिहड़े पंजाबी दे नवें उभर दे गायक हन, ते ओ बहुत वधिया सुरीली आवाज़ दे विच अपने गीत जिहड़े पेश करदे ने। साडी अज दी इस गाउंदी शाम दे विच ओ एक रचना लैके हाजिर हो रहे ने, करके मैनू याद रोया करेंगे। आस करदे हां कि इस रचना नूं तुसीं पूरा माणोगे, ते जिन्हां दे दिलां दी गल उन्होंने कीती आ ओ गल भी उन्हां तक पहुंच जाएगी। ते क्योंकि रोया किसे नूं दिल तो ही जा सकदा है, हसण वेले तां बंदा ओपरा भी हस सकदा है, पर रोण वेले उपरों नहीं रोया जा सकदा, सिर्फ दिलों रोया जांदा है। जदों हाय कही जांदी है जां रोया जांदा है, ओ सिर्फ रूह तों, दिल तों ते दिमाग तों रोया जांदा है। ते दिलशाद अली जी साडे स्रोतियां लई अपना कलाम लैके हाजिर ने। दिलशाद अली जी, तुहाडा दुआबा रेडियो दी गौंदी शाम दे विच निघा स्वागत है।
2: रचना गजल कुछ इस प्रकार है दोस्तों। करी करी के मैनू याद, रोया करेंगी तू। करी करी के मैनू याद, रोया करेंगी तू। पलकां नू हंजुआं दे नल पिगोया करेंगी तू। करी करके मैनू याद, रोया करेंगी तू। हाय करी करके मैनू याद, बदलां दे विच, बदलां दे विच चन जदों मुस्कुराएगा, बदलां दे विच चन जदों मुस्कुराएगा, चेहरा मेरा फेर तैनू

किसे पागल इशक दे विच होके विच होके हाय विच होके किसे पागल इशक दे विच होके पत्थर खा के जिस्म छिला लेते किसे आशिक बन के नैर पुटी हाय नैर पुटी किसे आशिक बन के नैर पुटी पट इश्क दे पर ना गए सीते इस कड़ी दो कड़ी दे इश्क नेता है इश्क नेता इस कड़ी दो कड़ी दे इश्क नेता कारोबार नू दिते लवाप लिते किसे चढ़ के मैल तो छाल मारी हाय छाल मारी

पुट ते पीछे कौड़ी पजदा फिरदा पता न कोई पलदा ऐ जदो समय दा चक्कर चलदा ऐ जदो समय दा चक्कर चलदा ऐ लेखा लिखिया मेट न सकदा हो लेखा लिखिया मेट न सकदा।

मैं तेरा पारदानी पानी, मैं तेरा राजा तू मेरी रानी। आ इक दूजे च समाइए नी, आपां दोवें हाणो हाणी।

कहे जागदीश मीर वाला इंसान जी हादा नारा मारदा हादा नारा मारदा नवाब शेर खान जी हादा नारा मारदा हाथ जोड़ खड़ा अर्ज गुजारदा नैनी अथर उते मनो ताहा मारदा मजबूर है सिपाही सरकार दा कहंदा एहो जही सजा दसे ना कुरान जी हादा नारा मारदा हादा नारा मारदा नवाब शेर खान जी हादा नारा मारदा सुबह सरहंद दे आगे खड़ गया सुचे मुसलमान नू गुस्सा चढ़ गया सच कहन उते सूरमा सी अड़ गया कहंदा शर शर झूठा थोड़ा फुरमान जी हादा नारा मारदा हादा नारा मारदा।

अपने खातर दुनिया मर दी मिट दी आई ए, किसे दी खातर दसो कीने जान गवाई ए, किसे दी खातर दसो कीने जान गवाई ए।

बरसता भीगता मौसम धुआं धुआं होगा, पिघलती शम्मों पे दिल का मेरे गुमा होगा।

0: गली के मोड़ पे सुना सा कोई दरवाजा, गली के मोड़ पे सुना सा कोई दरवाजा, तरसती आंखों से रास्ता किसी का देखेगा, निगाह दूर तलक जाके लौट आएगी,
1: क्या बात है,
0: निगाह दूर तलक